जो किछ करना सो कर रहा। सोदर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदर तेरा के हा सो करके हा, जित वह सर्व संभाले बाजे तेरे नाद अनेक संखा। केते तेरे वावन हारे,

आगे नरचाए रंगे रंगी पाते कर कर जिनसे माया जिन उपाय कर कर देखे किता अपना ज्यों तिस दी वड्याई।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

शून्यात् तत्त्रियकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रभ दातो दातार परयु जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जेह लग पव जल तरना बिनत करूं अरदास सुनहु जे ठाकुर पावे देहु दर्श मन चाओ भगत एहु मन ठहरावे बलियो चिराग अंध्यार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी

वरसै लाए चढ़ी, नानक पाणे चले कंत कै, सुमाणे सदा रली, महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बपुड़े, इस मेघे हाथ किछ नाही, जिन एहो मेघ पठाया, तिस राखहु मन माही।

नानक उन संग मोहे उदारु, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै, प्रभ कै सिमरन पहु न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तब पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ कै सिमरन तीरथ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दर गहमानी, प्रभ कै सिमरन होए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागौ पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद्ध माहि समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन परवानु, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधानु, प्रभ को सिमरह से बे महताजी, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजी, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभ को सिमरह बसै हरनेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन के सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ अष्टपदी, जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय, जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल होवै अति भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे,
सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै।

है हर नाम संगहूत सुहेला, ऐसा नामन सदा किया है नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पराही। अनिक बिघन जय आए श्रृंगार है, हर का नाम तत्काल उधार है। अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मलकबु न तूवै, हर का नाम कूट पाव खूवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइय साध कै संग। जिह मारग के गन जाहि न कुसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जिह पैडै मांद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सिंजानू, हर का नाम तहनाल पचानू। जय महाप्यान तप्त बहुकाम, तय हर के नाम की तुम परचाम। जहा त्रिका मन तुझ आकर कै, तह नानक हर हर अमृत बरख। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग। हर का नाम जन की वटियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन को आप दीना। हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात इहु हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संगवड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है। नाम तुल कछ अबर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूज सुनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदि। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। जोग व्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया। अनेक प्रकार की ये बहु जतना, पुण्य दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव, महा उदास तपिसर थीव। अग्न बाहे होमत प्राण, कनिकस्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करे बहुवासन, जैन मार्ग संजम अत्साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही कौ बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे। जल तो वह बहु देह अनीत, शुद्ध कहा हुए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनेक जतन कर तृष्ण न त्रापै। भेख अनेक गनि बुझै, कूट पाव दर गहने सिजै। छूट सुनाही उपयाल, वोहे व्यापै माया जाल। अवर करतू सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिन नहीं मानै।
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦਗਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋਮੈ ਚੋਰੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਾਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ। ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ। ਨਿਮਾਣੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਕਟਾਕੂ ਦੇਵੋ ਦਾਨ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਆਪਣ ਸੰਗ ਆ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸੁਕੋਏ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ। ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਆਨਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਜੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਿਰਦ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨੁ, ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨੁ। ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਜੈ, ਬਖਸ਼ ਲੇਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰੂ ਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ, ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਣਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵ ਕਮੁੱਲਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਬਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨੀ ਤਰਸਨਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। ਐਸੇ ਦੁਖ ਬੁੜੰਦ ਵਿਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਵਿਆਪੇ। ਆਦੰਤ ਜੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ, ਤਾਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਕੂ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ। ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੂ, ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਰਤਨ ਥਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਧ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮੱਚੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਣ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਚੰਦਨ ਲੇ ਪੁਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਭੇ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਪਸ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹਾ, ਗਲ ਪਾਤਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹਾ। ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਤ। ਸੁਣੇ ਅੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗੈ ਲੇਹੋ ਕੂੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਕਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝੈ ਡੋਰਾ, ਨਿਸਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਪੂਰਾ। ਕਹਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ, ਜਿਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਕਹਿ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ।
संग सहाई सुआवै न चीत, जो बैराई तस्यु प्रीत। बलुआ के गृह भीतर बसै, अंध केल माया रंग रसै। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल न आवै मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह। हे आवु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम कहे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। तुम आस पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कन्हेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए सुआज्ञाकारी। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सलोक देन हार प्रभ छोड़ तै, लाग है आन सुवाय। नानक कहु न सीजई, बिन नावै पत जाय। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक भी ना दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा, ताको की जय सत नमस्कार। जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व तोग नानक तिन पाया। अगंत सब अपनी दे रास, खात पीत बर तैन दुलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मन रूस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्ती से आज्ञा रख है, प्रभ की आज्ञा मानए मत है। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक पात माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिर की छाया स्यो रंग लावै, ऊ बिन सैव मन पछतावै। जो दिसै सो चलन हार, लपट रहो तै अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावै नेहि, ताको हाथ न आवै केहि। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानका फले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राजुवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रोम अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्तवमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है। मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तनि पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुकावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाय। गोबिंद भजन बिन बृथे सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछवर कमावत, मनि प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पेख न काहू पीन। अवर उपदेशय आप न करै, आवत जावत जन में मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पह माने। आप है आप आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव सियान सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस पावै तिसले लड़ लाए, थान तनंत रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक
काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाय अहंग मेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह तिसै त्याकत अवर लुभावह जे प्रसाद सुख सेज सुइजै मन आठ पहर ताका जस गावीजै जे प्रसाद तुझ सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दर गह मान पावै नानक पत सेती घर जावै जे प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिरौ ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताकै जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद आप भुखन पहरी जै मन ते सिमरत क्यों आलस की जै जे प्रसाद अस्तव हस्त सुवारी मन तिस प्रभु कौ कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याए जो एक अलखै इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाथ जे प्रसाद पिकै विस्मात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तिर कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास पर आप सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी मया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु नहात सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता हुए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की चर्च कथा अष्टपति साधक संग खोजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक सांगे कुपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही समानी साध कै संग अगोचर मिले
साध के संग सदा पर फुले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुई सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतुंता वै, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग न कबहूं तावै, साध के संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त गोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध के संग बसै थान उचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदानु, नानक साधु कै कुर्बानु, साध के संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय कर सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग श्रभ थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कछ कालो, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुकत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध बेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियानै, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै कस बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व कौशोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी के धीरजेक, ज्यों वसुदा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुणाओ, नानक ज्यों पाव का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमानु, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहि, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदरसी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट मृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकार माह ब्रह्म ज्ञानी कै ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कांत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष वेदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर धारै जो अंतर नाम सर्व में पेखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रस न परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शु पर त्रै रूप न पेखै नित्र साध के टैल संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा परस वैसनु सोजी सुपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह ने कर्म तिस वैसनु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तन यंत्र सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दिड़े अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन से सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सासंग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बुद्ध है राम नामा तुम मैं सोदै राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नया वै वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुख मैं जाने स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सासन पावे जन कोए कर कृपा अंतर उड़तार है पस प्रेत मुग्ध पात्र को तार है सर्व रूप का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कित न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसन दरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संगत मुदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम्हें हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरख तैसा उसोग सदा आनंद तै नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभाव है सोई फुन होग पसर वाप हो अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दया सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावा नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थ वासी कई कोट बन भ्रमै उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम ध्यावे नानक करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंधा ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिगात्म निकोर कई कोट पर दर्भ को ही रह कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट पर देश परमाहे जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर वृक्ष निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सूर नखेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धार नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जक किनर पिसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाज सब ते नेरे सब हूं ते दूर नानका फलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरक निवासी कई कोट जन्म है जीवह मरे कई कोट बहु जोनी फिर है कई कोट बैठ ही खाहे कई कोट काल है थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तह तह राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने भोपात प्रभ ते हुए प्रभ समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म राख सह समावे अपने जन को साथ साथ संभारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवेक है दूसर ना ही कोई
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲਸੋਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਕਿਨ ਮੈਂ ਥਪ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁਕਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤਿਰਾਕੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਸੁਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸ਼ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਣਜਾਣਤ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦੈ ਦਿਸਧਾਵੈ ਨਿਮਕ ਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰੇ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਕਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤ ਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ਼ ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬੜਾਈ ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਸੁਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬੂ ਬਕਾਸ ਪਿਆਲ ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾ ਵਨਹਾਰ ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬੂ ਮਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ ਕਬੂ ਪੇਘਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪਰਵਰਾਕੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੇ ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਿਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਪਾਵੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਿਆ ਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਿਨ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੁਣ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕੀ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ ਤਿਨ ਸਮਾਨ ਕਰ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੁ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨ ਬਧੈ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ ਕੂਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਧਾਰੇ ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਿਕ ਚਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਿਦ੍ਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗੈ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰਿਣ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ
जब जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचलना ही चीत जब लग मुँह मगन संगमाई तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लग को उठता वै तृप्त न आवे माया पाछ पावे अनेक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खमरे बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ वृथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख होए बड़पा की किसे प्राप्त होए कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन कर्ण हार उसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो किच किनो सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बुझे देखे करे बवेक कपे अनेक मरे न बिनसया वह न जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप दिशा समझे आपे रचिया सब कैसा था किन्नो अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते पिन कहो किच हुए थान तनंतर एक कैस हुए अपने चलता करने हार कौत करे रंग आपार मन में मन अपने माही नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोए संत कै दुखन तान भ्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाव को नाहे नानक संत भावै तावै भीगत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक किन टिकन न पाई संत का निंदक माह त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते ही संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावै तो उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत के दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किच नाहे अपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी कवर न रखन हार नान संत भावै तां लय उबार संत का दुखी इउं बिल लाए ज्यों जल बिहोन मछली तन फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै जो पाव किंद नहीं त्रापै संत का दुखी छुट्टै केला ज्यो भवान तिलकेत माही दुहिला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट हुए, जैसा पाव है तैसा कोई हुए, पया कीर्त न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, किसे त्यावो सास गिरा, सब कुछ वर्त तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया।

चतर चक्र मान्य है, चतर चक्र दान्य है, जा चिरी छंद, न सत्र है न मित्र है न परमंग न पित्र है न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय, न चित्र है न मित्र है परि है पवित्र है प्रतिश है आदिश है आदृश है अकृश है, भागवती छंद तु अप्रसाद काथते कि अशिज दिश है कि अभिज भिस है कि अगंज कर्म है कि अपंज परम है कि अभिज लुक है कि आदित सुख है कि अवधूत वर्ण है कि विभूत करण है कि राजन प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि आसुक वर्ण है कि सर्वा आभरण है कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्री है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुभाव अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीने के एक है अधीन है कि रोजी रजा कह रही मेरे हक है कि पाक बेऐब है कि गैबुल गैब है कि अहबुल गुना है कि शाहन शाह है कि कारण कुनद है कि रोजी दहंद है कि राज करहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र फाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र पोख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कली में के परमंग फही में के आकल अलाम के साहिब कला में कि हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निधान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तुरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमल किराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तु पराज है सदा सर्वसाज है समस्तु सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ अंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृगंग त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अछेज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलेख है अधिक है अलेख है अपेक है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग तर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल छांद त्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवंग प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जाता है न पाता है निरसाकम श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दहेंद है कि राजक रहेंद है क्रीमल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है
समस्तुल जुबा हैं कि साहिब किरा हैं कि नरकं प्रणाश हैं बहस्तुल निवास हैं कि सरबुल गुवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परंग परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेक हैं जमीन अलजमा हैं अमीकुल इमा हैं क्रीमुल कमाल हैं कि जोरत जमाल हैं कि अचलम प्रकाश हैं कि अमितो सुभाष हैं कि अजब स्वरूप हैं कि अमितो विभूत हैं कि अमितो पसा हैं कि आत्म प्रभा हैं कि अचलम अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार शंतु अप्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अन शेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रेत तर तुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आज जिना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरिकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्व पर है सर्व कर है सर्व पास्य है सर्व नास्य है करुणा कर है विश्वम्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणा कर है अजपा जाप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खालकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भव भंजन है अरिगंजन है रेप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कार है हरता हार है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है कुजंग प्रयात शंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग तम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंबे भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी शंद अजय अलय अभय अभय अबू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेक अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात शंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी त्रिमुख निंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनिमे हरियं करियं क्रीमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਵਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤ ਕੋ ਨ ਦੇਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸੁਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕਉ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਪੂਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਪਹਿਲੀ ਬੇਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਪਹਿ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਬਾਂਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹਾਏ ਰਾਜ ਹਜਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨਿਮ ਅਨੇਕ ਬਸੇਖੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ਪੌਨ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੇਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੇਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀਰ ਮਰੂਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੇਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੇਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਅਬ ਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗੜਾਣ ਕੋ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਿਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦੇਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦਨ ਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਜਪੇਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੇਂਗੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾਢ ਜੈਸ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੇਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੇਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਤਪ ਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੇਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੇਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੇਂਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਹਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈ ਸੋ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇ ਹੋ ਸਬੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ

आयो को उबतान को पूजत है पाश को मृतान को पूजन थायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कबे उबाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहौ आप हाथ दय मोहे बचावहौ सुखी बसै मोरो परिवार सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करियै सब बैरन को आज संगरियै पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे पारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दाए मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करे हौ रक्षा राख ले हो मोहे रख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घाट घाट के पट पट की जान जब उद करक करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब अकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद ना जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन भिन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा होय बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संगरो दुष्ट जेते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हावय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न है आय है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताकि ताप तनक मोहरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई
ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈਂ ਸਰਣ ਤੇ ਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੋਬਰਾਤਾ ਕੇਲੇ ਵੇਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਕੋ ਸ਼ੈ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੁਖ ਨਤ ਸਹਿ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਆੜਿਲ ਸੁਨੇ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ ਹੋ ਜੋ ਜਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਚੌਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਹ ਸਹਸ ਪਣ ਜੈ ਅਰਧ ਸਹਸ ਪੁਨ ਤੀਨ ਕਹਿ ਜੈ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵੀਵਾਰਾ ਪੀਰ ਸੁਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨੇਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣੇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨੇਓ ਦੋਹਰਾ

रहत दान, बबेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे पवित्र दर्शनी इशनान, चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा, मत उची, मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणिया दे माण सतगुरु, ने ताणिया दे ताण, ने ओटिया दी ओट, ने आसरिया दे आसरा, सचे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, गुरगद्दी ते विराजमान दसाही पातशाहियां दी जागदी जोत, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जिया का कोटान कोट शुक्र है महाराज जी। आप जिया ने अमृत वेले तो लैके महाराज जी खुले दर्शन दीदार बख्शिश किते। सतगुरु जी आप जी की टहल सेवा करद हुई बेअंत भुलां की खिमा कर देनी, अगे तो सतगुरु जी समत बख्शिश करो। आप जिया के पावन अस्थान सिख गुरुद्वारा सनहोजे विखे महाराज जी अमृत वेले के दीवान सजाए गए, सजे हुए दीवाना दे विच संपूर्ण श्री सुखमणी साहब जी के पाठ होए, उपरंत नितनेम दियां पंज बाणियां दे पाठ होए। महाराज जी बाणी पढ़दियां सुनदियां सेवा करदियां विचरदियां होईयां बेअंत भुलां दी खिमा करनी, बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान करनी, बाणी दा भाव समुची संगत दे हिरदियां ते वसाउणा, बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना, काम क्रोध लोह मोह हंकार तो बचाउणा, सिखी सिदक केसां सवासां संग निभाउणा। महाराज जी दाराइयां संगतां दियां हाजरियां तेर फुल पेटावां प्रवान करनियां, सब दी हाजरी लेखे लाओ, दरों करों सिखी सिदक भरोसा, नाम दियां दातां दे के निवाजणा, सभना नूं तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां महाराज जी, परिवारां विच सुख शांति वरतौणी, नाम दा प्रकाश करना, दुखां दा नाश करना, कमाइयां च वाधे पाउणे सतगुरु जी मेहर भरिया हथ रखना, बच्चियां नूं तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां, माता पिता दे आग्याकार बनाउणा महाराज जी, जो संगतां घरां दे विच बैठ के मीडिया दे राहीं महाराज जी आप जीआं दी याद विच जुड़ियां ने, तिन्हां दी अरदास सभना नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी, अपने नाम दा रंग बख्शिश करना महाराज जी, सत संगत दे नाल रलाउणा महाराज, दर घर दे टहलियां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी, तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां महाराज जी, भै भावनी सदका अपनी सेवा करन दे लाहे प्रदान करने सतगुरु शुक्र है। चार पैर वैण सुख दी बतीत कीती सतगुरु जी, आया चार पैर दिन अपनी याद विच सुख दे नाल बतीत करवाउणा, सरबत्र संगत दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, हर मैदान फतेह बख्शिश करनी जी। सतगुरु जी आप जी दीआं बख्शियां होईआं दातां विचों कड़ा प्रसादी देग हाजर है, आप जी कृपालता करके भोग लाओ जी। भोग लगा शीत प्रसाद, साध संगत दे रसनी लायक होवे, जो छके सो आप जीआं दा नाम जपे महाराज जी, जिन्हां भंडारें चो रस्तां बस्तां हाजिर हुईआं भंडारे भरपूर करने काल, कंटक चूर करने रस्तां दरगाहों भेजणियां सतगुरु जी, करो कृपा पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके अगले दीवान सजाउण दी आग्या बख्शिश करो जी। सही गुरमुख प्यारे मेलो, जिन्हां दे मिलियां आप जीआं दा नाम चेते आवै, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

काट काट नानक माझा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावहो करते का, निमुख सिमरत जित छूटै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी दे विच अमृत वेले हाजरियां पर रही। गुरु प्यारी, गुरु खालसा, सात संगत जी, आप जी सारे ही धनता दे योग हो जो अमृत वेले तो लैके सतगुरु जी दियां हाजरियां भरिया ने, गुरु की बाणी सरवण कीती है। सतगुरु जी सभना जिया दियां हाजरियां दर प्रवान करन, सभना नूं दर घर तों सिखी सिदक भरोसा नाम दियां दातां, तंदुरुस्ती दियां दातां बख्शदे होए इसे तरह अपने पावन चरण कमलों दे नाल सतगुरु जी जोड़ के रख लगे इस जीवन नूं सफलिया कर देण। हुण समा होया है रोजाना दे नियम अनुसार श्री आसा जी की वार दे कीर्तन प्रारंभ होणगे। गुरु घर दे हजूरी रागी बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी मनमोहन सिंह जी आप जिया आसा जी की वार से कीर्तन सरवण करा के, आप जिया ने एकाग्रता सहित गुरु की बाणी के कीर्तन सरवण करके अपने जीवन दिया इन घड़िया सफलियां बनाने का यतन करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच त्यान सच, जो मर जमे सो कच नी कच महला।

जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझहता है। सजुग्र संतोख का धर्म गैरथवा हो, त्रित रच जत का जोर गैरथवा हो, द्वापर तप

पाठपुस्तक संध्याबादंग सिल पूज सबगल समादंग मुख झूठ पे पोखन सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लाटंग दोई धोती वस्त्र कपाटंग।

रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस देश सो पावा सदा सुब सलाहा तेरी ना मन वसा वाय नाम जिन क्या मन वसया वाजे शब्द कनेरे का है नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रह सचा नाम मेरा आधार सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांसक मनया वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किया गुरु भट्टो जिस दया वडियाइया कहे नान सुनो संतो सब धरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पांचा सब तित कर सभागे सब दवाजे कला दित कर धारिया पंच दो तदवस किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जन को से नाम रखे लागे कह नान तहसकोवा तित कर अन हदवाजे आनंद सुनावट भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रो संताप उतरे सुनी सचे बाणी संत साधन भय सर से पूरे गुरते जाणी सुन ते पनीर कहते पवित सत गुर पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनह तूरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात दिवसरा दे दाई दया खेला सगल जगता चंगे आईया बरे आईया वाचे धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख जले के ती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी

सत्संगत बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वासवती पाशे दसवीं प्रेत संभवती समर कह गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुरते अमरदास नामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण चाहे थे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर्ण उन्हें आवैता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार अंतर के खालसा से बोलो जी वाहेगुरु। गरीबन महाराज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते वाहे दे कंडेड़ कीता तना प्यारे ते चारियां दी कमाई दा ते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म ए सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखनियां ते चढ़े आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा सी किसे देखे संसार सिंह आया ते ना दी कमाई दा ते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। पंजाब गुरुद्वारे अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता है जित आमण का सदका सर सिख होगा जहां जहां गुरु खालसा साहब चरिया देख ते की फतेह बिरद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी रहा केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान चौकियां चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत पूजी मत पद के रखे आप वाहेगुरु। गुरु जी विनवाज पंथ सदा से आज दार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आपके पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दार तुम्हें और समा दादा अपने खालसा जी ने बख्शो हे ने उठिया जी ओट गुरु ने आसरिया ने आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार जी दोहे कर जोड़ करो अरदास भावे तो आने रास हे गरीब नवाज जी आप जी ने चरण कामना अरदास में पिया आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पान संगत न दर्शन दार दे के अनुसार उतार जियो बेअंत बाणियों के पाठ एज रागी संघा ने आपके चरण जासा की वार देखी।

रचहु नाथ ही सहाई संतना। अब चरण गहे रहाओ आहे मन अवर न पावे, चरणावे चरणावे उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यों। अनरस नहीं चाहे एक हर ला है, अन ते टूटी है रिख ते छूटी है, मन हर रस कूटी है, संग साधु उल्टी है।

अर्थ खोया यह रखहु मन माही रहा तीर्थ करे व्रत पुन राखे नह मनुआ बस जाकू निहफल धर्म ताहे तुम मानो साच कहत मैं या कहो।

जो प्रभु के गुण गावे। बिलावल अष्टपदिया महला पहला घर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट वसै देखै सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई विण पै पै भगत ना होई शब्द रते सदा सुख होई।

नानक कहे अवर नहीं कोय। बिलावल महला पहला, मन का कहया मनसा करे, इहो मन पुन पाप उचरे, माया मद माते तृप्त न आवे, तृप्त मुक्त मन साचा पावे, तन धन कलत सब देख अभिमाना, बिन नावे किच संग न जाना रहा, की चेहरा सुभोग खुशियां मन केरी, धन लोकां तन भस्मै ढेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्दै

आस रह अतीत जाने सब तिसका तन मन अर्पै है इहु जिसका ना उहु आवै ना उहु जाए नानक साचे साच समाए।

भाव। पार अठारह में चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुईया। साकत कूड़े ऊब सुख हुए, मन अभिमान बिछड़ दूर गैया। हार गात्मित करता आपे जाने, सब बिद हर हर आप बनैया। जिस सतगुर भेटे सो कंचन हुवे, जो तुर लिखिया सो मिटे न मिटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया। गुर चरनी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया। परम बैराग नित नित हर त्याए, मैं हर गुण कहते भाव नी कहिया। बार बार खिन खिन पल कहिए, हर पार न पावे परे परैया। शास्त्र वेद पुराण पुकार है, धर्म करहु खट कर्म दृढ़ैया। मन मुख पाखंड भरम वेगूते, लोभ लहर नाव भार बुढ़ैया।

निज घर तार चुवै अत निर्मल, जिन पिया तिन ही सुख लहिया, मन हट कर्म करे अभिमानी, ज्यों बालक बालू कर उसरैया, आवै लहर समुंद सागर की, खिन मह भिन्न भिन्न टह पैया, हर सर सागर हर है आपे, एहो जग है सब खेल खेलैया, ज्यों जल तरंग जल जल है समावै, नानक आपे आप रमैया। बिलावल महला चौथा। सतगुर परचै मन मुंद्रा पाई, गुर का शब्द तन भस्म चढ़ई दृढ़ैया। सतगुर परचै मन मुंद्रा पाई, गुर का शब्द तन भस्म दृढ़ैया। अमर पिंड भय साधु संग, जन्म मरण दो मिट गैया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करहु मधुसूदन माधो, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया। रहाओ तजै गृष्ट भया बनवासी, एक खिन मनुआ टिकै न टिकैया, धावत धाई तदे घर आवै, हर हर साधु शरण पवैया। धियां पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया, आसा आस करै नहीं बूझै, गुर कै शब्द निरास सुख लहिया। उपजी तर्क दिगंबर हुआ, मन दह दिस चल चल गवन करैया, प्रभवन करै बूझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिख है बहुत तेरे, मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया, तृप्त संतोख मन शांत नयावै, मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंत उपैया, साधु शरण परै सो उबरै, खत्री ब्राह्मण।

मोती चूर वड गहन गहनैया, हर हर सरदा सेज बिछाई, प्रभ छोड़ न सकै बहुत मन भैया। कह प्रभ अवर

प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करहें तेरे वस पैया। दया दीन करहु रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महल्ला चौथा। मैं मंतन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे श्रद्धा मन पूरी, ज्यों चातक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिसे आगे सिर कट कट पैया रहा। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न पैया। वैदिक नाटक देख फुलाने, मैं हिरदे मंतन प्रेम प्रीर प्रेम पीर लगैया। हौं खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, ज्यों बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभ कीरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दुइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हौं तिस विटहो बल बल घुम गैया। अनेक जन्म के विछुड़े जन मेले, जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल न पावे मन मुख पर मैया। गुर गुर करत शरण जे आवे, प्रभ आए मिले खिन ढील न पैया। कर कर क्रिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लो भैया। बेसुआ कह घर बेटा जन्मया, पिता ताहे क्या नाम सदैया। पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर हर हर हर भगत जमैया। भगत भगत करते हर पाया, जा हर हर हर हर नाम समैया। प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया। जिनको ठाकुर किरपा धारी, पाह पकर नानक कड लैया। राग बिलावल महल्ला पंजवां। अष्टपदी घर बारवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद उपमा जात न कही मेरे प्रभ की, उपमा जात न कही तज आन शरण गही रहाओ।

पीत अल कमल भिन्न ना पीत ज्यों चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यों तरुण

गुणति और सो गुणति जल जो गुणति बहुपात प्रचार सत्वर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को रख लिया काटिया रोग महा सुपाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गोहो हर नाम का ओला तुझे माला गए ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण की तिहंत जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रोह के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रोह की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महानुप्रोह के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल उदित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरवण प्रिय सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासो अज दे जिहड़े हन चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरवण प्रिय गुर इतिहासिक इतिहास सरवण प्रिय दासल फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र मुकद्दस तिनगी गोद आनंद माने गुरु प्रसाद सिंह जी हो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है। आज संध्या वेले दे इना विशेष गुरमत समागमां विच आप जी दी गुरबाणी कीर्तन रही सेवा करन दा सुभाग अते आप जी दे दर्शन करन दा सतगुरु जी ने एक अवसर बख्शिश कीता है। बाणी दा कथन है, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। यह कीर्तन दी महानता, यह कीर्तन दी वड्याई। जिहड़े सचमुच अंदरों गुरु शब्द दे नाल जुड़ के गुरु नानक दे उस महान बख्शिश कीते कीर्तन दा आनंद माणदे हन, वो कीर्तन जिहड़ा तुसी रोज सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी तो दूर बैठे श्रवण करते हो। मैं ये हर थां बेनती करदा कि भावे गुरु रामदास जी नूं प्यार करने वाला, उस दर नूं प्यार करने वाला शरीरक तौर ते हजारां किलोमीटर दूर बैठा होवे, पर जदों उस दर दे दर्शन हुंदे हन, उत्थों प्रसारित हुंदे कीर्तन दी धुनी कन्नां विच पैंदी है, उसले क्यों नहीं लगता कि असी दूर बैठे कीर्तन सुन रहे हैं। उस वक्त क्यों लगता है कि धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री दरबार साहब विखे बैठे हुए हैं। यह बख्शिश है उस दर की, उस घर की। डिठे सबे थाव नहीं तुत जिहया, बदो पुरख बिदाते तातु सोहया। वसदी सगन अपार अनूप रामदास सुर, हर हा नानक कसम लजाए नाय रामदास सर। तन तन रामदास गुर जिन सिर आत्मे सवारे। आओ सारे ने रल के कीर्तन करना है। जिथे तुसी कन्ना दे नाल बाणी नूं सरवण करना है, उथे नाल कोशिश करनी है साडी रचना दी भी हाजरी लगे, साडी रचना भी निर्मल ते सुची होई गुरु दे शब्द नाल, उस वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल। इसलिए सारे रल के आपां कीर्तन करिए। अगला शब्द आप जी श्रवण करोगे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम अवखद मुख देवे, काटे जम की फंद। करो कृपा सारी।

गुरु स्वारी गुरु रूप साध संगत वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हो मैं खोई ये पवित्र पावन गुरु मंत्र गुरु नानक पातशाह जी ने सानू बख्शिश कीता है। यो गुरु मंत्र है जिस दे जपन नाल जन्मा जन्मा दी पापा दी मैल इस मन दे तो उतर जाती है, क्योंकि सतगुरु जी सानू दसदे ने इस मन को जन्म जन्म की मर लागी काला हुआ सिया हो, जिदा स्याही हुंदी काली ना। सतगुरु जी कहिंदे ने मन इहो जिहा बणिया पिया है, इसे करके संसार दे विच इह विकार भोगदा है। विचार माड़े ने परत दर परत इस मन दे उपर पापां दी मैल चढ़दी रहिंदी है। वाहिगुरु दा सिमरन इस करके है, वाहिगुरु नूं सुनाउण वास्ते नहीं। सतगुरु जी कहिंदे ने सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागावे, सुते हुए मन नूं जगाउण वास्ते है, आवाज देनी है उठ उठ भाई जाग। इस करके सिमरन करना है कि सुता होया मन जाग जावे। जदों मन सुता होया जागेगा ते उस वक्त इसका पार उतारा हो जाएगा। सुगुरु प्यारी साध संगत आओ पवित्र पावन शब्द श्रवण करिए। मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निदान, अमृत सर सद ही भरपूरा।

आओ गुरु प्यारे सत्संग जी, अज दे पावन पवित्र दिहाड़ा होला महला वैसाखी का पूर्व ये दीवान इन्हों खुशिया दे विच सजे हैं। संगत बड़ी दूरों दूरों चल के गुरु दरबार दे विच पहुंच रही हैं। पहला शब्द आप जी ने सरवण किया, आओ जी तू आओ हमारे हर जस सरवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तनहरिया हर जस तुम संगावना। फिर गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी काज सवा, ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा लेके पहुंच रही हैं संगत। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सोख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमार। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। साडा आउण दा समा सफल हो जाए जे सतगुरां दे चरणां नाल जुड़ के ए श्रद्धा दी भावना दे नाल कि मालका तेरी सरण दे विच आए हाँ। कृपा करी मेहर प्रिया हथ रखी, आने वाले समय दे विच संगता दे सारे कार्य आप जी ने सवारने हैं। सो आओ गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी